जिनू सूरी जी सजदा करी जी देख तो सागरी मंगी दे पानी मैं उतदा सिमरन कर दी उस दी पढ़ दी बानी ओ मालिक ओ खालिक ओ शाफी ओ काफी

बस दुख तकलीफां भोगणी दिन में अखुन चाहू जिंदा करते मैं मर जानी मैं उस दासी मेरे निकर दी मैं उस दी पढ़ दी बाणी।

0: गई रूटे रीटे बुक माही दिया दी वंडी गई। थैंक यू सो मच जींदे वास्ते। हेलो
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी, थैंक यू हर बार
0: ओके
1: दी तरह जी।
0: शुक्रिया
1: जी दोस्तों, ये सन जी
0: शुक्रिया।
1: मोहम्मद जी बख्शी जी जुड़े सन अपने नाल दुबई तो। थोड़ा जिहा नैट दी शायद प्रॉब्लम सी उन्हां दे वल्लों, आवाज थोड़ी जी हो रही सी डिस्टर्ब, पर फिर भी सुनन योग सी। लो फिर दोस्तों, इस दे नाल ही मैनू दिओ आग्या, सोमवार नूं मिलन दे वादे दे नाल होवेगी मुलाकात, ते जुड़दे आं फिर नवां नवेला प्रोग्राम लैके। सैटरडे संडे कल नूं जिहड़ा समझ जी संघ शमी होणगे हाजर, महफल मित्रां दी लैके प्रोग्राम, ते प्रोग्रामां नूं सपोर्ट करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तां दा धन्नवाद है। अपने हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधु जी, सिकंदर सिंह ओजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, ते मान सिंह सैनी साहब, बलवीर सिंह सैनी साहब दा शुक्रिया ते धन्नवाद है। लो फिर दोस्तो, हैव ए नाइस वीकेंड सब नू, ते रखड़ी वाला दिन भी मुबारक होवे, ते हसते वसदे रहो, खुशियां विच खेड़े लगे रहन, ते सोमवार नू मिलन दे वादे दे नाल मुलाकात होगी भारतीय समा 9:30 बजे। सत बद घट बोल के गुस्ताखी माफ, ते सोमवार नू मिलन दे वादे दे नाल होवेगी फिर तो मुलाकात। सत श्री अकाल दोस्तों।

0: कोई रोदा साथी नहीं, ए नवदीप एक दिन रुक जाऊं, जिथे सारी दुनिया छड़ी तेरे बिन भी सर जाऊं। दिल तो पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं।
1: वाह जी
0: ओ असल च ना अज कल प्यार भी अट्रैक्शन दा हो गया कि
1: जी
0: ओ बस जेड़ा तुर पिया होंदा भी बस वो होया प्यार ते पता ही नहीं लगता भी कदों ओही गल वो खत्म भी हो गया, ओदा भी नहीं पता लगता रिलेशनशिप
1: बिल्कुल
0: दा।
1: बिल्कुल है जी,
0: अज
1: बिल्कुल
0: तो फिर एक होर भी हो गया भी ओदे च कई कई कुछ आ गया भी आ लिविन है जी, आ पलाना है जी, आ टमकाना है जी,
1: जी।
0: है इस करके भाई जी रिश्ते पहला वाले रही नहीं है कि अके आने वाला समा ना मेनू लगता है कि
1: जी
0: चलो ठीक है चंगा हो, पर ये लगता नहीं मैनू भी इस हिसाब नाल जिन्हें आप सोचते हो उस हिसाब नाल ये
1: जी
0: चलूगा।
1: बिल्कुल है।
0: ते मैनू अद्धा को 2 मिनट होर दे दो क्योंकि मैनू ना एक गल
1: हाँ जी
0: मेरे दिमाग दिमाग इसे इसे गल से ढोकदी हुई है थोड़ी गल से। ते
1: जी
0: वो ना पिछले दिन ही अज गल की रखा सी एदा टॉपिक
1: जीवन साथी,
0: जीवन साथी, जीवन साथी लाइफ पार्टनर
1: लाइफ
0: वाइफ
1: पार्टनर
0: ला लो
1: जी।
0: हाँ कुछ ला लो इनू। ते ओदे ते एक गल ढोकदी हुई सी, वो पिछले दिन ही ना मैं ओदे शमी बाई जी दो गैप मार गए सीधे ही,
1: जी
0: दो छुट्टियां सीधियां।
1: हाँ जी हाँ जी
0: ते ओदे च मैं सुनानिया सी दो कु गल्लां, ते मैं थोनू अपने जीवन साथी दे दो कु गल्लां सुना दिना बस
1: जरूर
0: भी
1: जरूर जरूर जरूर
0: मैनू
1: जरूर
0: किवें दा लाइफ लाइफ
1: जी
0: पार्टनर मिलिया। मैं ओ दिया दो कु गल्लां थोनू मैं सुना के ते फिर मैं बंद कर
1: जी
0: देना, तो बाद तुसीं सुन लो जी। मन जाना मन नहीं है तेरी मेहरबानी है, मेरे जहे नाल जो निभाई जानी है।

मैं जिन्ना खफा हुआ हाय तू ना प्यार जतावे मेरी ये सरदारनी तेनू उमर मेरी लग जावे मेरी ये सरदारनी तेनू उमर मेरी लग जावे।

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उठे खूनी रागदा ऊदम जहे जोदे उड़वारा।

0: बड़ी है। शुक्रिया जी।
1: सुत्यो, हफ्ता भरी काम में फल दे बेचे। हुण मैं थोड़ी जान पछाण पंजाबी देश नवे उभरदे शायर तलविंदर शेरगिल जी ना करवाउण जा रहे हैं। तलविंदर शेरगिल जी जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील बंगा दे नेड़े वसदे पिंड गुणा चौर तो हन। बहुत वधिया शायर ने इहदे नाल दी नाल उहनां दे एक लिखे हुए गीत पंजाब सिआं नूं साडे गायक कृष्ण ही उन्हें गाया है, जिहड़ा इस वेले पंजाबी दे स्रोतियां दी बड़ी पसंद बनिया होया है। ते इहो जिहे वधिया रचनावां दे रचनहारे तलविंदर शेरगिल नूं असीं दुआबा रेडियो दे मंचे निगाह जी आया कहिंदे हां।
2: हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां, हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां। जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां, जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां। तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां, तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां। असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां, असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां। कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया, कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया। असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां, असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां। किसे वी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता, किसे वी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता। जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां, जुगां चों जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां। मिले वरदान ही कारण असाडी मौत दे ने, मिले वरदान ही कारण असाडी मौत दे ने। खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां, खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां।
1: ਇਸ ਰਚੋ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਵੱਲਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
3: हैरी रंधावा वालों पेशी खिदमत है शायर जगदीप हसरत जी दी एक बहुत प्यारी गजल। कान मेरे दर ते दीवा तर गया,

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हनेरे नू कर

तैनू याद आएगा किदां हिजर दे दाग, किदां हिजर दे दाग तो या करेंगी तू करी करके मैनू याद।

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालो चुप ताई अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास